इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यू।
3: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
4: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक
0: वादिये लोलाब के दिलकश

0: नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

Assalamualaikum adab and welcome to all of you. दोस्तों हॉट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार और लो हाजिर है आरजे सिल्स लेकर शो व्हाट्सएप.

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। और दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो। जी हाँ, गल सुनने वाली है। डायल करे 999-0494 नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। शो का हिस्सा बनने के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। साथ ही फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनौर को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। जी हाँ, आंखों से आंखें लड़ाए, हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काए। चक्सी उसके साथ शो वॉस अब सुरे हक धड़काते रहो।

0: Zeus. Kom nou ja.
1: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. जी हाँ ब्रदर, आज का वेदर
1: रेडियो चुनाव, रेडियो रेडियो चुनाव, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट.
2: रेडियो चुनाव 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में वेदर क्या कहता है चलिए बताते हैं.
1: रेडियो चुनाव, रेडियो रेडियो चुनाव, वेदर अपडेट.
2: अभी जो धूप निकली है वो बादलों के पीछे ढक सकती है और देयर आर चांसेस के हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी एक्सपीरियंस करेंगे आप. इट्स मोस्टली सनी फॉर टुडे बट देयर आर चांसेस के सूरज बादल को ढकने की कोशिश करेंगे. यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस होने वाला है आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर. अभी की बात करें तो यू इंडेक्स वीक पर है ह्यूमिडिटी 78%, विंड स्पीड 5 किलोमीटर, विजिबिलिटी 14 किलोमीटर.
1: रेडियो चेन्नई, रेडियो रेडियो चेन्नई, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट.
2: आज का सनराइज हुआ 5:44 पर, आज का सनसेट होगा 7:32 पर. इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन रेडियो चुनाव से डे हक्ट धड़काते रहो मेरे यार.

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
3: दोस्तों, रेडियो चुनार की हर फ्रीक्वेंसी पर कहत यानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन वायरल ऑन व्हाट्सएप, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम पहुंचाते हैं आप तक जो होता है वायरल। जी हाँ, आए दिन हमें कुछ न कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है रिलेटेड टू थेफ्ट एंड चोरी। और जब चोर को मोर दिख जाए तो क्या होता है, ऐसा ही कुछ देखने को मिला एक ज्वेलरी शॉप में जो कि लोहरदगा झारखंड में है। चोर आए, चोरी का प्लान उनके दिमाग में था, पूरी तैयारी, एक बंदूक के साथ दुकान में घुसे। जैसे ही गन पॉइंट पर पैसा और हीरे जवाहरात मांगने लगे, सक्सेसफुल प्लान फेल हो गया। इनके साथ तो खेल हो गया, क्योंकि मालिक जो ज्वेलरी दुकान के हैं बड़े बहादुर निकले, गन छीनी और लगाए दो लपा, डशम डशम डां डां ठां ठां। और उसके बाद क्या, हमारी पुलिस आ गई और चोरों को धर दबोचा, और सीसीटीवी और फुटेज ये आइडेंटिफाई करती है कि चोरों को मोर दिख गए। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन अब ये वायरल था तो वसा पर आ चुका है।
4: चोरी है काम
3: जॉक्सिस के साथ मजदार शो, वसा सिटी हक धड़काते रहा।

0: Comment là?
1: Radio Channel 90.4 FM Show what's up show mein Shri Amarnath ji Yatra Updates.
2: अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका।
1: जी हाँ, रिज्यूम किया गया है श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिर से। आपको बता दें, ब्रीफ वेदर रिलेटेड सस्पेंशन चल रहा था और उसके बाद यात्रा जो है लिमिटेड मोमेंट के साथ रिज्यूम की गई है। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि 4.5 लाख पिलग्रम जो है अब तक अपना यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं, दर्शन पा चुके हैं होली के ऊपर।

आज 3886 पैलेग्रम जो है भगवती नगर बेस कैंप से निकल चुके हैं और ये जो काफिला है 177 गाड़ियों का है। टीम रेडियो चुनाव 90.4 FM आपकी यात्रा संपूर्ण और सफल हो।

0: अजय दीवा।
1: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
0: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, वो ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। रेडियो चैनल 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन से स्टे हुक्ड, धड़काते रहो।
5: अच्छी सोच तेरी हीर, किस्मत को गाली ना दे, तेरे हाथ में तेरी तकदीर।

0: bunch of zoos. Going out. Zeus.
1: Ardhur ke dhurkan radio channel 90.4 of him. Enjoy kar rahe ab Mazdar show. What's up?
2: Zeus.
1: व्हाट्सएप शो में वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपको आरिफ जुड़े हैं हमारे साथ। आरिफ के साथ है जुमान अनूर। लगते हैं आरिफ भाई शो बहुत पसंद आता है, रोज सुनता हूं और अपनी बेटियों को भी सुनाता हूं व्हाइल ड्रॉपिंग देम टू द स्कूल। हम रेडियो चनार सुनते रहते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। यूं ही प्यार देते रहे दोस्त, और हमारी प्यारी सी बेटियों के लिए जी ढेर सारा प्यार।

0: हैं, कहानियां जो वीरता से भरी हुई है, कहानियां जिन्होंने दुनिया को इंस्पायर किया, देश के उन सपूतों की कहानियां जिन्होंने अपना जीवन देश के नाम किया। वसुप शो में आज का टॉपिक स्टोरीज फ्रॉम द फ्रंटियर्स। देश के सपूतों की बात करेंगे, आज करेंगे बात हमारे सुपर हीरोज की, आज बात होगी इंडियन आर्मी की और उनसे रिलेटेड स्टोरीज की। Stories from the front lines and frontiers. आज वो सब शो का टॉपिक आप बने रहे हैं, सुनते रहे हैं और दिल की धड़कन को धड़काते रहे हैं। याद रखिए, आपने भी टॉपिक और शो का हिस्सा बनना है और टॉपिक से रिलेटेड अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए 9999-0494 इज द नंबर। मैं हूँ जॉक्सूस, यह है रेडियो चैनल 90.4 FM, मेरी जान सरेहट, धड़काते रहो।
1: प्रचंड

जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,

0: सावन की घड़ा चल अपना चला चल अपना चला जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ
2: दीवाना है ये
1: दिल की बात साहिल के साथ ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: Kom on, Aja.
1: Dios.
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप व्हाट्सअप शो के सफर में मैं हूं आपका सफर हम सफर और जीसस और आपको बता दूं कि आज बात हो रही है जी हां स्टोरीज फ्रॉम द फ्रंट लाइन स्टोरीज फ्रॉम इंडियन आर्मी शो में हमारे साथ जुड़े हैं आतिफ लिखते हैं आतिफ सर कैसे हैं आप गानों की सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया है रेडियो चैनल सुनता हूं आपके थ्रू कनेक्टेड रखता हूं अपनी गाड़ी में घर में घर से बाहर भी सुनता रहता हूं और मज़ा आता है रेडियो चैनल हर दिल की धड़कन और हम धड़काते हैं इस धड़कन को तो ये धड़कन जो है जोरों से धड़कती है जी हाँ दोस्त जोरों से धड़काते रहें अपनी बात हम तक पहुंचाते रहें यूं ही प्यार देते रहें थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए आते हो और जैसा कि मैंने कहा आज बात हो रही है स्टोरीज की स्टोरीज फ्रॉम द फ्रंटलाइनर्स ये जब भी हम इंडियन आर्मी या इंडियन ट्रूप्स की बात करें तो जाहिर सी बात है दे आर द हीरोज जो इस वतन के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं चाहे हम मेजर शैतान सिंह की बात करें जिन्होंने अपनी एक टुकड़ी 120 सोल्जर्स लेकर हजारों चाइनीज ट्रूप्स को धूल चटा दी या बैटल ऑफ लॉन्ग वाला जो कि हर किसी की जबान पर है हर किसी को पता है इस बैटल के बारे में जस्ट 120 इंडियन हीरोज और एक हंटर एयरक्राफ्ट जिन्होंने पूरी पाकिस्तान टैंक रेजिमेंट को रात भर अपनी माटी से खदेड़ कर बाहर कर दिया और जवान जसवंत सिंह 72 घंटे की वो जद्दोजहद जहां पर उन्होंने चाइनीज आर्मी डिवीजन को 3 दिनों तक ये याद दिलाया कि माटी के सपूत इंडियन आर्मी के जो बेटे हैं जो रक्षक हैं किस तरह से अपनी माटी की रक्षा करना जानते हैं और जाहिर सी बात है हमारे हीरोज और उनसे रिलेटेड अनगिनत कहानियां जिनके बारे में हो रही है आज बात शो का हिस्सा भी बने अपनी बात हम तक पहुंचाए 8899-04904 इज द नंबर मैं हूं जॉक्स उस रेडियो चैनल 90.4 एफएम पर सिटी हक धड़काते रहो

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: मुझे जी ये वाली मुन्नी चलेगी।

0: か。
1: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: बॉलीवुड
1: जी हाँ, फैंस प्यार देते नहीं समा रहे थे संजय दत्त की बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी एंड एवरीबडी वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द सेलिब्रेशन
0: न्यूज बॉलीवुड न्यूज
1: किस्सा है संजय दत्त के बर्थडे का जहां पर सेलिब्रेशन चल रही थी एंड फैंस डिलाइट हुए व्हेन ही कॉल्ड सलमान खान. इट वाज मोर लाइक कि आपके बिना बर्थडे कैसे मनाया जाएगा. चर्चा है, सबको पता है दैट सलमान एंड संजय दत्त आर क्वाइट गुड फ्रेंड्स एंड व्हेन इट टॉक्स व्हेन इट्स अबाउट फ्रेंडशिप दीज एक्टर्स शेयर ओकेजंस स्पेशल मोमेंट्स एंड मेमोरीज. सलमान खान आए और गले लगाते हुए संजय दत्त ने उनका वेलकम किया और फैंस प्यार देते हुए नहीं समाए. रेडियो चुनाव 90.4 FM हर दिल की धड़कन सिटी हक दरगाह.

0: Kom maar aan, ja.
1: Tech Talks.
2: Radio Channel 90.4 FM Mazdar Show, WhatsApp Shoga segment, Tech Talks mein aaiye baat karte hain Apple ka upgrade program jo ab United States ke customers ko de raha hai ये मौका कि वो खरीदने के बजाय हार्डवेयर या जो भी डिवाइसेस हैं उन्हें लीज कर सकते हैं। जी हाँ, इन पार्टनरशिप विद लाना, एक कंपनी जहां पर कस्टमर्स को ये मौका, ये फायदा दिया जा रहा है कि वो डिवाइसेस को लीज पर ले सकते हैं। एलिजिबल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो एलिजिबल डिवाइसेस और आईफोन, मैक, आईपैड्स एंड एप्पल वॉचेस। और स्टार्ट जो है आईफोन 16 से हो रहा है, वही अगर हम बात करें तो इससे आपका सिबिल वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होगा और एप्पल स्टोर्स पर ये जो फैसिलिटी है अवेलेबल है। आईफोन को ख़रीदने के लिए मिनिमम $17.99 पर मंथ, एप्पल वॉच के लिए $11.99 पर मंथ, वही मैकबुक के लिए $24.99 पर मंथ और आईपैड्स जैसे डिवाइसेस के लिए $11.99 पर मंथ। आई नो आप भी सोच रहे हैं कब आएगा ये ऑप्शन इंडिया में, एंड वी आर होपफुल कि बहुत जल्दी इंडियन यूजर्स भी एप्पल डिवाइसेस को लीज पर ले पाएंगे। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन जुड़े हमारे साथ 8899904 इज द नंबर। मैं हूँ जॉग्जू, सिटी हक, धड़काते रहो।

नहीं मिलने तो मैं आई हूँ, और जाने के लिए नहीं बस आने के लिए। क्योंकि ब्रदर ये है शो चुनार।

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Beats on repeat. Beats on repeat. Show Chunar Beats. आप enjoy कर रहे हैं only on radio Chunar 90.4 FM. ये सारी बातें मस्ती मजाक fun entertainment entertainment और entertainment के अलावा ये सारी information आप तक पहुंचती है. Beats on repeat. And well, I was super duper excited. It's Monday and it's fun day for me because usually क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि देखिए ना कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम बोले वीकेंड है बट ऐसा कुछ भी नहीं है. मंडे देखिए ये मंडे से इतनी नफरत क्यों, प्यार जो ये सैटरडे से है कहीं है मंडे से और भी प्यार तो नहीं. बिकॉज अगर मंडे नहीं आएगा तो आप कैसे वीकेंड के लिए इतना एक्साइटेड हो सकते हैं और कितना इंतज़ार आपको करना पड़ेगा. तो देखिए ये डोपामाइन हमें कैसे मिलता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार में छुपा है वो प्यार जो आपका और मेरा है. अब देखिए कि मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि सुबह आ जाऊँगी और डे सारी बातें करूँगी आपसे. तो फाइनली आ गई है बगड़ी जहाँ पर आप हैं मैं हूँ. मांगा है दस्तूर कहाँ जाने का हुजूर, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन का रोज यानी कि हर चीज़ मिलेगा हर रोज. सो स्टे ट्यून्ड और बताएं मुझे क्या किया आपने वीकेंड पे. एंड हाउ इज द जोश, माय जोश इज़ वेरी हाई हाई हायर एंड हायर क्योंकि मज़े ही आ जाते हैं जब वीकेंड पे एक रेस्ट मिलता है और माइंड रिचार्ज होता है और हमें रेडी होते काम करने के लिए. अभी तो मैं रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए. अब बताए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है जज्बात हालात ख्यालात मेरे साथ शेयर करने के लिए.
1: देख लो मिट गई दूरियां, मैं
0: यहाँ हूँ. बिल्कुल मैं तो यही हूँ और आज चुकी हूँ आपके साथ ये सारी बातें करने के लिए और बैक टू बैक सॉन्ग्स आप तक पहुँचा रही
2: हूँ.
0: बिल्कुल बीट में तो हर चीज नई होती है तभी ये है शो चुनार बीट्स बीट्स ऑन रिपीट ओनली ऑन हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन.

0: Heart Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM. 0.4 FM.
1: मत कर लाला मत कर लालाया मत कर मत कर लालाया मत कर मत कर लालाया मत कर भाई फिर से दोनों जरा

0: बीट्स और रुपीर तो है शो चुनाव और बीट्स है और क्या कुछ है, यानी कि एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के अलावा क्या है, एंटरटेनमेंट के अलावा इंफॉर्मेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचती है. And right now we are talking about National Highway of Jammu and Kashmir. So क्या है अपडेट अभी का, तो आपको बता दें कि नेशनल हाईवे जो ओपन हो चुका है आज 3 अगस्त को लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए बोथ साइड से. एंड सब्जेक्ट ये है कि फेयर वेदर एंड बेटर रोड कंडीशन हो चुकी है एंड दैट्स व्हाई किया जा रहा है नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से. अभी अगर आपको श्रीनगर से जम्मू जाना है, जम्मू से श्रीनगर आना है, तो आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं. बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ टाइमिंग क्या है. जैसे नगरोटा टूवर्ड्स श्रीनगर जो है वो अलो किया जाता है 7 AM to 12 PM. एंड उसके अलावा अगर हम बात करें उधमपुर टूवर्ड्स श्रीनगर, दैट्स 8 AM to 1 PM. काजीगुंड टूवर्ड्स जम्मू एंड अलो किया जा रहा है 11:30 AM से लेकर 5:30 PM तक. अभी यही क्या का अपडेट है. अभी जो व्हीकल्स है उनकी टाइमिंग ये रहेगी. और आपको बता दें जो हैवी लोड कैरियर्स है उनको अल्टरनेट डेज पे ही अलो किया जाएगा, उन्हें हर दिन नहीं किया जाएगा. बिकॉज हैवी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, हैवी जो लोड कैरियर्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइमिंग है, यानी कि ऑल्टरनेट डे एक दिन छोड़कर एक दिन उनको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर. सो बी केयरफुल, गाइडलाइंस के मुताबिक ही आप अपना प्लान बनाएं, इसको एग्जीक्यूट करें. बट बी केयरफुल, बी कॉशियस, बिकॉज हमारे लिए टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और हमें पता होना चाहिए कि रास्ते में फंस ना जाए या फिर कोई दिक्कत ना आए. उसके लिए हम हैं ना, हम पहुँचा रहे हैं आप तक जानकारी. और फिलहाल के लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव केयरफुली, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड उसके अलावा ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो करना इज़ इम्पॉर्टेंट. और गलत जगह पे ओवरटेक करना नॉट फेयर, क्योंकि भाई है कि फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है और हमें फिर नुकसान भरना पड़ता है. सो वो नहीं चाहते हैं, वी केयरफुल यू मीन इट. एंड ये तो गलत बात है कि अगर हम सही जानकारी ना पहुँचाए.
1: ओ मेरी जा तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है.
0: वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आपका मुस्कुराना बहुत सही चीज़ है, बहुत सही बात है. और गलत ये है कि अगर आप बात ना माने और अपना ख्याल ना रखें. सो बी केयरफुल, बी हीरो नॉट जीरो, क्योंकि हम कभी कभार कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाते हैं और वो गलती हम तो नहीं करने देंगे. हम है ना, हम हैं आपके साथ. फिलहाल आप बताइए क्या है आपका ओपिनियन थॉट. 8 9 0 4 9 0 4 WhatsApp कीजिए शो चुनाव बीट्स का, ऐसा बन जाए.

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: चुनार बीट्स विद हर्षदीपा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM

0: खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर तवन बोझो तो खबर विस्तार शांत क्या अच्छी अच्छी खबर और किस पे हम बातचीत करने जा रहे हैं
1: आज की खबर स्वागत है आज की
0: और आज की जो खबरें हैं वो सीधा आई हैं चलकर हुमा कुरैशी जी थोड़ी सी नाराज हो गई है कि जो

यार आडवाणी को ट्रोल किया जा रहा है मूवी टॉक्सिक के सॉन्ग तबाही के लिए कि आपको इतना ज़्यादा किसने हक दिया है कि आप किसी की बॉडी शेमिंग करेंगे, किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे, या फिर अगर हम ओवरऑल देखें ये कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा है कि हम जेंडर बाइसनेस हो रही है, क्योंकि यश भी है सॉन्ग में एंड ऑल्सो कियारा है, तो कियारा को ही क्यों हेट मिल रहा है, ये कहना है हुमा कुरैशी का। अब ये तो लोगों का काम है कि वो कहीं ना कहीं लड़कियों को ही हमेशा इस चीज़ पे, वो कहते हैं ना कि जेंडर बाइसनेस रहती है जब बोल्ड सीन्स एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं तो उसमें ज़्यादातर एक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया जाता है, अरे वाह क्या एक्टिंग है, और वहीं पे अगर हम एक्ट्रेस की बात करें तो हमेशा वो ट्रोल होती है उनके बोल्ड सीन्स के लिए या फिर ओवरऑल उनके कपड़ों के लिए, सो ओवरऑल उन्हें हर एक चीज़ से दिक्कत हो जाती है कि भैया जी अगर ये सीन्स मैं कर लूँ कहीं मैं कल को ट्रोल ना हो जाऊँ। अब ये कहना है हुमा कुरैशी का कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि ये हमारा काम है, हम इसी के पैसे लेते हैं, और आप देख लीजिए कि जो काम इन्होंने किया है एक्टिंग पे फोकस कीजिए, और आप देख लीजिए कि मतलब ही मूवी का टॉक्सिक है तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी टॉक्सिसिटी होगी ना। And I'm also excited about the movie because Yash, Huma Qureshi, Nayanthara, Tara Ustari, देखिए इतनी सारी एक्ट्रेसेस और यश एकदम स्टाइल मारते हुए, यानी कि 26th को रिलीज होगी अगस्त को मूवी एंड एवरीबडी इज एक्साइटेड। बहुत सारे लोग कह रहे कि काफ़ी टॉक्सिक लग रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टॉक्सिक में ही तो मज़ा है, सो मूवी का नाम ही टॉक्सिक है। बट आप मुझे बताएं आपका ओपिनियन क्या, 8899904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चिनार पीस कैसा बन जाइए।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Unstoppable with RJ Deeba.
1: शो चुनार बीट्स और अनस्टॉपेबल एक छोटा सा सेगमेंट एक डोज हर रोज आपके लिए मैं पेश करती हूँ. ट्राई करती हूँ कि आपके साथ कुछ दिल की बातें करूँ. स्पेशली जब हम बात करते कश्मीरी में कहावत एक है कि मर उनगस्तास पेट यूस मर ने दी मर उनगस्तास पेट. मुझे लगता है कि यूस तत लायक आस मरन गस तस पेट यूस एस समझे मरन गस तस पेट हन यमस तुम इखलाक आसन मरन गस तमस पेट हन यमस तिथ वसा बासन. ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए ज़िंदगी में कि अगर कोई इंसान उस लायक है कि हम उस पे अपनी जान निछावर करते तो उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी में. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हम अननेसेसरी उनको बहुत कुछ देते हैं ज़िंदगी में. यानी कि इफ़ समबडी इज़ नॉट वैल्यूइंग अस एंड दे आर नॉट हैविंग वो चीज़ दिमाग में कि भाई इनकी भी वर्थ है इनकी एक वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में तो हमें वहाँ पर खटखटाना दरवाज़ा या फिर उनके पास बार बार जाना दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम. दैट इज़ एक्चुअली अपनी सेल्फ रिस्क के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना और ये समझना कि शायद हम कुछ नहीं और हम क्यों दूसरों के लिए इतना करें जबकि वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं. सो अंडरस्टैंड इट और हम सब ने ही खुद को थोड़ा समझने की ज़रूरत है. एक पॉइंट आता है ज़िंदगी में जब हम ये समझे कि जो हमारे लिए कर रहा है कुछ यू साइन खतर चुके कारण तिम सी खतर छुपा जान ऐसी तम चीज़ इस किस वक्त समझकर वैसे तुम्हें क्या ख्याल बताया बहुत नहीं उस ख्याल 8899 0094 मे वन ब 8899 0094 इसी नंबर तो ही क्यों पनी मैसेज पन ओपिनियन बताया बात नहीं तो जो बोझान शो चुनार बीट्स रेडियो चुनार 91.4 FM स्पिट.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

Bees on repeat, show chunar beats, aap enjoy kar rahe hain only on radio chunar 90.4 FM. Dei sari baatein ho rahi hain and we are talking about hamari zindagi ka ek khaas hissa, ek aisi blessing jo almighty ki taraf se hamare liye precious bhi hoti hai aur hum aisa lagta hai ki agar ye nahi zindagi mein to zindagi be matlab si hai. Ji haan, main ek aise insaan ki baat kar rahi hoon jo har ek ki zindagi mein ek bahut hi ahem role ada karte hain. I mean wo kitna zyada sehte hain ek insaan ko bada karne mein, 9 mahine kok mein rakh kar kaise wo har ek hardship ko paar kar jate hain aur phir bhi ek uff tak nahi karte, just because wo love hamare liye unconditional hota hai. I know, आप समझ गए होंगे. I'm talking about mother and specially inspiring mothers जो आज string बने हैं family के एक बच्चे की unconditional love, deep resilience in everyday life and specially क्या उनका role रहता है घर में या फिर कैसे वो अपनी family को support करते हैं, कैसे वो आज समझती है कि अपने बच्चे के लिए क्या सही है, कैसे वो अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, उन मदर्स के बारे में आज शो पे बात हो रही है. एंड स्पेशली इफ यू आर अ मदर एंड आप मुझे बता सकते हैं कि जब अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं और वो दिल में आता ही नहीं है कि कोई मतलब से करे या फिर पाप से क्या मिलेगा, वो सब होता ही नहीं. ये वो प्यार है जो कुदरत की तरफ से वो नेचुरल है, दैट समथिंग कि वो प्यार कम ही नहीं होता है. माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पायरिंग मदर्स. मुझे बताइए आप अपनी मम्मा से कितना प्यार करते हैं. और मैं तो कहती हूँ कदर उनसे पूछिए जिनकी माँ नहीं होती है और वो अपनी मदर्स को कितना मिस करते हैं. एंड जितना बोले उतने बहुत कम पड़ रहे हैं क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता काफ़ी खास होता है. मुझे बताइए शो का हिस्सा बन जाइए. 8999 0104 टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनाव बीट्स का हिस्सा बन जाइए.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Beats on repeat, show Chunar, beats up, enjoy kar rahe hain only on Radio Chunar 90.4 FM, dei sari baatein ho rahi hain and we are talking about inspiring mothers, mother, jo hamari zindagi ka ek bahut hi important part hai, yani ki ek aisi blessing जो जिसको हम जितना काउंट करें उतना कम है, क्योंकि हमारी माँ होती है ऐसी है कि वो बेमतलब हर एक चीज़ करती है, चाहे बच्चा उन्हें बड़ा भला बुरा करते फिर भी उनके मुंह से आह तक नहीं निकलती कि मेरा बच्चा परेशान ना हो। सो आज की इंस्पायरिंग मदर्स यही है कि माँ जिनसे हम, जो हमारा पहला टीचर होती है, जो हमें सिखाती है, हमारा सेफ प्लेस होती है हमारी माँ, और जिनसे हम पहला क्वेश्चन भी पूछते हैं, मम्मा ऐसा क्यों है, मम्मा वैसा क्यों है। सो मम्मा जो है ये वर्ड ही ऐसा है ना कि बस दिल भर जाता है इस वर्ड से, एंड स्पेशली जो हमें एक सेफ प्लेस, एक सेफ स्पेस मिलती है अपनी माँ के पास, वो कहीं और नहीं मिलती है। एंड आज के अगर हम एग्जांपल्स देखें, लीडिंग जो मदर्स है, जो अभी मदर्स जो दे आर इंस्पायरिंग एवरीबॉडी अपने हार्ड वर्क से, काइंडनेस से, सेल्फ केयर से, या एवरीडे हाउ दे आर मैनेजिंग देयर वर्क, इवन वर्किंग जो वुमेन है वो घर में काम करती है, घर के बाहर काम करती है, अपने बच्चे को कैसे वो चाहती है कि आज मेरा बच्चा जो है वो इस फास्ट प्लेस वर्ल्ड में सबसे आगे हो, और उस पर कोई भी चीज़, वो कहते हैं ना कि इंसान हमेशा सोचता है कि अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में, लेकिन माँ एक ऐसी इंसान, एक ऐसा प्यार, एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो हमेशा सोचती है कि जो मैंने नहीं सीखा वो मेरा बच्चा सीखना चाहिए, और ख़ासकर ये सबसे आगे होना चाहिए, इसको मैं सबसे बेहतरीन और बेहतर से भी बेहतरीन इंसान बनाऊँगी। सो आज की माएँ, मैं तो कह सकती हूँ कि ये है कि हमारा इंस्पिरेशन तो हमारी माँ ही है, और वो जो हमें सिखाती है वो कभी भी हमें गलत नहीं सिखाती, वो हमेशा चाहती है कि मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा खुश हो, सही रास्ते पे हो, और उन पे कभी भी कोई आँच ना आए। आप अपनी मम्मा से कितना प्यार करते, अपनी मदर से कितना प्यार करते मुझे बताइए। 8 8 9 0 4 9 0 4 4 x व्हाट्सएप कीजिए शो चुनार बीट्स का हिस्सा।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया ये नालायक विवेक, अरे बैटरी लाना ही भूल गया
0: क्या यार विवेक?
2: कोई काम सब तो मैं

Beats on repeat, show Chunar. Beats up, enjoy kar rahe honi on radio Chunar 90.4 FM. We were talking about inspiring mothers, हमारी जो माँ हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो हमारे लिए पहला टीचर होती है, जो हमारे लिए पहला एक सेफ प्लेस होती है, हमारे लिए पहली वो इंसान होती है जो हमें बोलना सिखाती है. एंड आई बिलीव कि जो आज की इंस्पायरिंग मदर्स हैं वो कैसे हर चीज़ को हैंडल करती है और कैसे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए आज हमेशा सबसे ज़्यादा सबसे आगे वही खड़ी होती है. एंड मुझे लगता है ये अगर हम एक अच्छे इंसान हैं, अगर हम एक बेहतर इंसान हैं ज़िंदगी में, तो उसका सबसे पहला क्रेडिट हमारी माँ को जाता है. हमारी माएँ हैं इतनी खूबसूरत है ही, इतनी ज़्यादा वो कह सकते ना कि वो बेमतलब बिना किसी भी फेवर के हर एक चीज़ करती. उन्हें ये भी नहीं होता कि कल को मेरा बच्चा मेरे साथ कुछ वफा करेगा या क्या करेगा, उनको नहीं होता है इस चीज़ की परवाह. वो बस 9 महीने पहले दर्द सहती है, हमें कोख में पालती है और उसके बाद भी कितना ख्याल रखती है. सो हमारी माएँ हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है, वो हमारे लिए टीचर भी है, हमारे लिए एक सुपर वूमन है. एंड क्या कुछ नहीं हम कह सकते अपनी माँ के लिए, अपनी माँओं के लिए जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्यार देने के लिए हमारे लिए आए. सो एक ऐसा सेफ प्लेस, एक ऐसा ब्लेसिंग जिसे हमेशा हमने अपनी ज़िंदगी में काउंट करना है. कभी भी अपने माँओं के साथ बदसलूकी या फिर कोई भी गलत चीज़ ना करें, क्योंकि माँ बाप बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है हमारी ज़िंदगी में. उनकी कदर करें, ऐसा ना हो कि फिर बाद में पछताए. सो आर पेरेंट्स दे आर प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, एंड हमेशा उस गिफ्ट की हमने कदर करनी चाहिए.

शो म्यूजिक ऑन डिमांड और सबसे पहला ट्रैक आया जीनत का, और जीनत ने कहा कि आप बिल्कुल भी मेरी मैसेज नहीं देखते, आई एम सो सॉरी, क्योंकि कभी बार क्या होता है कि बहुत सारी मैसेज आती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि रीवा जानबूझ के हमारा कॉल नहीं उठाती है, बट यही है कि हम आपकी कॉल, आपकी मैसेज का इंतज़ार करते हैं। सो सबसे पहला ट्रैक जीनत के लिए यहाँ पर शो म्यूजिक ऑन डिमांड में, एंजॉय कीजिए ट्रैक ऑन योर रेडियो चैनल 91.4 FM 8999049 04 text WhatsApp की जो शुभ म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड में अगली रिक्वेस्ट आई है रूही जान की टंगमर्ग से, ट्राई को ये सुनना चाहते हैं ऑल न्यू रेडियो चला 90.4 पर, कहा है कि इतना मजा आता आपका शो सुनने में, प्यार बढ़ जाता है, प्यार तो बढ़ेगा और वो भी बेशुमार, और जब आप जुड़ते हैं तभी मजा आता है। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, आप सुन रहे हो हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चला 90.4 FM, शो म्यूजिक ऑन डिमांड।

ये जो म्यूजिक ऑन डिमांड का लास्ट ट्रैक है और मैं चली अपनी गली गलाऊंगी आपसे ढेर सारी बातें करने बराबर 12 बजे। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, अब अपने ख्याल रखी शो हंगामा लेकर फुल ऑन ड्रामा करने आएगी बराबर 2 बजे। असरा फिलहाल मैं जा रही हूँ, आप अपने ख्याल रखिए और सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: चले यहाँ गोली क्योंकि बेबी को बेस पसंद है।
1: बेबी को तो बेस पसंद है बट हमें ड्रामा और हंगामा पसंद है। शो शुरू हो चुका है, हंगामा जहाँ होता है, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन। जी हाँ, शो तो हंगामा है, कुछ देर पहले शुरू हुआ है और अभी वक्त है कि हम बात करें कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है वहाँ क्या चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी देखिए, कुछ तो ट्रेंड करता है, कुछ वायरल होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। बट इस सेगमेंट में, इस टॉपिक पे हम ऐसे बात करते हैं कि जो एक्चुअली रीपोस्ट कर रहे हैं लोग, जो स्टोरीज पे अपलोड कर रहे हैं, जो मीम्स हैं, या किस चीज़ के बारे में कौन सा मीम बन रहा है, या कौन सी रील पे लिप सिंकिंग हो रही है, डांस रील्स बन रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएटर्स क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए, इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ तो ट्रेंड करता ही है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। और अगर उसकी हाइलाइट्स बताएं जो बहुत ज़्यादा अभी लोग देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं कि समय रहना इज अ जेंटलमैन। वाई? बिकॉज देयर वाज अ गर्ल ऑन द स्टेज जिनका हैंड बैग उन्होंने पकड़ा हुआ था, जस्ट बिकॉज शी वुड फील कम्फर्टेबल टू डांस एंड सिंग विद करण औजला। एक तो ये हाईलाइट है, इसके अलावा भी एक और बहुत ही आई वुड से एंटरटेनिंग हाईलाइट है, दैट इज कि देयर वाज एन कंटेस्टेंट जिन्होंने खामोशिया वाला ट्रैक इतनी खूबसूरती से और इतनी सटायर में जिम वाले जो कॉन्सेप्ट पे लिखा और गाया भी। सो जैसे कि हुक है खामोशिया, ही वाज सिंगिंग कमजोरियां तेरी मेरी, और सो लाइक दैट इज गोइंग ऑल ओवर द इंटरनेट। बट डेफिनेटली अरिजीत सिंह का ये गाना हमारे लिए र्यून हो चुका है, बट इन अ एंटरटेनिंग इन अ फन वे। अगर आपने अभी भी लेटेंट का एपिसोड कोई नहीं देखा, यू डोंट नो व्हाट इट इज़, इट्स अ वेरी फन एपिसोड जो नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पे आता है, एंड द क्रिएटर द होस्ट इज समय रैना। फिलहाल देखिए कमजोरियां वाला ट्रैक नहीं बल्कि खामोशियां वाला ट्रैक सुनते हैं। बैक टू बैक रेडियो सुनार पे एड फ्री म्यूजिक होता है, मैं वहां सुनते रहिए रेडियो सुनार, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई, और कुछ ट्रैक्स के उस पार है अपडेट्स, मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार।

Welcome back to Show Hangama and you're listening to the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. देखिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ ट्रैक्स के बाद हम वापस आएंगे. मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे, वो नहीं तो आए, बट मैं आ गई टू टेल यू द अपडेट्स अबाउट रेलवे टुडे, द कश्मीर रेलवे लिंक. और अभी की बात करें तो अब आज का जो अपडेट है दैट इज़ रिलेटेड टू वंदे भारत. एंड वंदे भारत जो ट्रेन है एक्चुअली दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर पीपल एंड स्पेशली सिर्फ वंदे भारत नहीं, जो भी लोकल ट्रेन्स अभी ऑपरेट हो रही हैं बड़गाम श्रीनगर बानीहाल संगलदन या माता वैष्णो देवी कटरा से, सारी की सारी जो ट्रेन्स हैं वो अभी पैसेंजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं. वो क्यों? इसलिए क्योंकि कुछ टाइम से जो नेशनल हाईवे है जो NH-44 है वो कुछ टाइम से मतलब पार्शियली ओपन किया जा रहा है या क्लोज़र ही होता है या बंद ही होता है. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेन्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं पैसेंजर्स के लिए. इसके अलावा एक और अपडेट है दैट जो एक्चुअली 31st of July पे वो ऑर्डर इशू हुआ था 14th of August के लिए अगस्त तक, बट फिर भी दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू पीपल दैट के जो ट्रेन्स हैं, तीन ट्रेन्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी उस दिन भी, द जो 12:40 की ट्रेन होती है

बड़गाम से और बाकी जो भी ट्रेन होती हैं बानीहाल के लिए इवनिंग की दो ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें अपना जो शेड्यूल है वो देखना है कि कैसे हम चीज़ों को लाइक अपने रूटीन को या अपने शेड्यूल को जो ट्रेवल प्लान है हमारा उसे किस तरह हम सही बना सकते हैं, किस तरह अकॉर्डिंगली बना सकते हैं कि कैसे हमारा जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ इन ट्रेन के कैंसिल होने से ऑल्टर ना हो। देखिए फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स और कुछ ही ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। मैं हूं अश्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा तो है, बट अभी जैसे कि हमने कहा था, मैंने कहा था आपको कि हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक इज़ रिलेटेड टू समथिंग जो हम अभी डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, फेस भी नहीं बट हमें कहीं ना कहीं खुद को अडाप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मौसम ही वैसा है। सो आज का जो टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू समर हेल्थ हैक्स। समर हैक्स, क्योंकि देखिए अभी जून, जुलाई और अगस्त का के जो महीने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट और टेम्परेचर में सबसे आगे होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और अभी का अगर देखा जाए तो 36 डिग्री तक हो गया था जुलाई में, जो टेम्परेचर हाईएस्ट था इट वॉज 36 डिग्री सेल्सियस। सो इट वॉज़ अलॉट फॉर यू नो, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली इन सब चीज़ों का, ये टेम्परेचर जो हाइक है इसका रीज़न है, इसका जो है एक बैकबोन है, किस वजह से हो रहा है ये चीज़ें। बट अभी की बात करें तो वी हैव टू टॉक अबाउट कि हाउ विल वी अडाप्ट थिंग्स। हम चीज़ों को, अगर चीज़ें बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, तो हम अपना ख्याल किस तरह रख पा सकते हैं और पाते हैं, और हमें किस तरह रखना चाहिए।

जी हाँ, गर्मी तो है और अभी कुछ दिनों से मौसम थोड़ा सा स्टेबल है, बारिशें हो रही थी, बट अभी की बात करें तो फिर से वो ह्यूमिडिटी, फिर से वो टेम्परेचर बढ़ चुका है और इंसान जो बना क्या क्या करो यद गर्मस मज, और समझ भी नहीं आता कि हम सुबह अभी मौसम बदल जाता है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो हम किस तरह के आउटफिट्स पहने, किस तरह के कपड़े पहने, क्या लें साथ में, क्या हम एक्सेसरीज जो अपने साथ या डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो किस तरह हम ऑल्टर करें, हमें क्या चीज़ें साथ में लेनी चाहिए। अब देखिए, अब जो भी हैक्स हैं उनके बारे में आज बात करेंगे, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं हूं आसरा, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM, हर दिल।

0: जे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: घुसी जाओगे क्या?
2: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।

0: करी ही पीछा।
1: हाय, मैं मस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि आज हम समर हेल्थ हैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या डाइट, क्या हाइड्रेशन, सन हीट प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीजें जिनका ख्याल रखकर हम अपनी लाइफ का जो और लाइफस्टाइल जो है वो और इफिशियंट कर सकते हैं, और इस जो गर्मी में, इस समर में अपना और इफेक्टिवली अपना ख्याल रख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो। 8899904904 इज द नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुधार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sunar 90.4 FM, the hottest frequency of North Kashmir. हंगामा तो है पर ड्रामा तो ये मौसम कर रहा है, क्योंकि कभी धूप होती है, कभी छांव, कभी बारिशें, कभी तेज हवाएं, पर ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट देखिए, अब जैसा भी मौसम रहे, हमें अपना ख्याल रखना जरूरी है। एंड स्पेशली टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समर हेल्थ हैक्स, और हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन यानी कि आपको पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखिए, यू हैव टू सिप वाटर ऑल अलॉन्ग द डे। और ज़रूरी है कि जिन फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में हाई वाटर क्वांटिटी हो, यानी कि कुकम्बर्स हो या वाटरमेलन है, ये सारी चीज़ें हम ज़रूर कंज्यूम करें। और पानी के अलावा ऑल्टरनेट्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, उन्हें कुछ

0: अल्टरनेट ही ज़रूरत होती है. तो कोल्ड ड्रिंक्स या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो नहीं पीने चाहिए, बिकॉज उनमें कैफीन होता है और एडिशनल जो एडेड शुगर्स होते हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. बट इसके अलावा आप कोकोनट वाटर या लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू पानी लेमत्री शको घर बनाए मगर खंड बजाय हको इस नून तथ मजरास खंत्र, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है. अब इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट, अगर आपको वो टेस्ट नहीं पसंद तो कोकोनट वाटर का बिल्कुल वाटर जैसा सिमिलर ही टेस्ट होता है और आप दैट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर वाटर. और पानी की बात हुई है तो पानी वाला डांस तो बनता है. देखिए पानी वाला डांस भी जरूरी है समर्स में. यू हैव टू गो आउट जहाँ पानी हो टू रिफ्रेश योर सोल. एंड इसके अलावा काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे स्पॉट्स पे जाते हैं जहाँ पानी हो, वाटर बॉडी हो, तो थोड़ी ठंडक वहाँ ज़रूर होती है. सो इट्स लाइक यू कैन यू नो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ आप. एंड स्पेशली अगर हम डाइट की बात करें, हाइड्रेशन की बात करें, देयर इज़ वन मोर थिंग जो हमें ख्याल में रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि हमें लाइट मील्स खाने चाहिए. लाइट फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि हमें बहुत सारे मील्स खाने चाहिए बट लाइट मील्स. कोई हैवी या ग्रीसी तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, उससे और भी ज़्यादा सफोकेशन सी लगती है.
1: पानी में आग लगाए, बेबी यू जस्ट लाइक अ फिश, किसी के हाथ ना आए, वाटर से खेलती हो, मजे तुम ले.
0: मैं हूँ अश्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. हाँ,

0: से असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा है और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर है 90.4 FM है, बैक टू बैक ट्रैक्स है, सही है मेरे यार वाला रेडियो सुनार भी है। बट टॉपिक क्या है? टॉपिक है समर हैक्स, समर हेल्थ हैक्स। और हमने हाइड्रेशन की बात की, हमने डाइट की बात की, अभी हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। एक डेडिकेटेड, आई वुड से अ डेडिकेटेड टाइम फॉर सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन इज समथिंग ऑनेस्टली बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाने से क्या होता है, क्यों लगानी है सनस्क्रीन, क्या पुराने ज़माने में लोग सनस्क्रीन पहन लगाते थे या नहीं लगाते थे क्या? और देखिए, अगर हम सनस्क्रीन की बात करें, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और मिनरल सनस्क्रीन, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना। देखिए, सनस्क्रीन के टाइप्स होते हैं, जेल फॉर्म होता है या क्रीम फॉर्म होता है, बट मिनरल आपको उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं एंड एट लीस्ट SPF 30 या उससे ज़्यादा जो रेंज की सनस्क्रीन यू हैव टू यूज़ एवरी मॉर्निंग। और ऐसा क्यों है और सनस्क्रीन से क्या होता है? जो भी यूवी रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, 80% तक रुक जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो ऑन ग्राउंड या बाहर आउटडोर पे कोई काम नहीं है, तो फिर भी हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं? बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इनडोर भी काम करते हैं, फॉर योर इनडोर सेफ्टी। वाई? बिकॉज जो विंडोज़ होते हैं वहाँ से भी जो रेजेस हैं वो भी पास करती हैं। चाहे विंटर है, समर है, क्या है क्या नहीं है, सनस्क्रीन लगाना is very important।

0: हाय, मैं हूँ अस्टर और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। और जैसे कि आज हम समर हेल्थ हैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, डाइट, कैसे 12 बजे से और 4 बजे तक बहुत ही पीक हीट आवर्स होते हैं, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवरसेल्व्स और वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स दैट वी आर वेयरिंग, क्योंकि अगर आप पॉलिस्टर या सिंथेटिक फाइबर पहनेंगे तो उनमें ज़्यादा गर्मी होती है। देखिए, ये सब चीज़ें तो हम सब जानते हैं और काफ़ी अच्छा लगा बात करके, बट अब देखिए कुछ ट्रैक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज का स्पोर्ट्स अपडेट क्या है, क्योंकि शुरू हो चुका है सेगमेंट गेम ऑन
1: टोरंटो रेडियो चुनाव 90.4 FM। Game on with RJ Asra, only on Radio Chunar 90.4 FM.
0: मैं वस्त्रा, शुरू हो चुका है गेम ऑन, जहां मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट, चाहे वो लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट हो या कुछ ऐसे फैक्ट्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो।

मैं बस यूं कहीं और यूं वापस आई. एंड जस्ट अ हिंट, इट्स ऑल अबाउट कश्मीर टुडे एंड नॉट जस्ट लोकल कश्मीर स्पोर्ट्स न्यूज बट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज रिलेटेड टू कश्मीर. मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. मैं बस यूं कहीं और यूं वापस आई.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
3: वेलकम बैक टू द हॉरस फ्रीक्वेंसी 90.4 एफएम पे। अभी शो चल रहा है हंगामा और अभी सेगमेंट है गेम ऑन। देखिए गेम तो ऑन है ही और स्पेशली हम हमेशा फोकस करते हैं कि कैसे कश्मीर का जो स्पोर्ट्स

मेंशिप है या स्पोर्ट्स फील्ड है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है. सिर्फ और सिर्फ लोकल नेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं. और सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, जिनकी नी इंजरी की वजह से उनको रिप्लेस किया है एंड रिप्लेस किया है आकिब नबी, जो कि दिल्ली कैपिटल्स में खेलते हैं एज आईपीएल क्रिकेट प्लेयर. और आकिब नबी कश्मीर से है. ही हैज़ लाइक वर्क सो हार्ड. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कश्मीर में कोई ऐसा इंसान है जो आकिब नबी को नहीं जानता. एंड सो दिस इज़ हिज चांस टू शाइन एंड टू प्ले अगेंस्ट श्रीलंका इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम. अब देखिए, मैंने कहा था कि एक ही खबर नहीं बल्कि दो खबरें हैं, वो भी रिलेटेड टू कश्मीर. 1st of August 2026 को मैच हुआ था एट द इवेंट ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन, ब्रेव CF 107. और ये क्या मैच होता है? दिस इज रिलेटेड टू अ फाइट, यानी कि MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स से एक फाइट होती है जहां पे जीता है द वन एंड ओनली ओएस याकूब ने. एंड ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में उन्होंने अपने जो ओपोनेंट है फर्स्ट राउंड में ही जीत ली थी, नॉक आउट कर दिया था उनको, जो बल्गेरिया का एक कॉम्पोनेंट था, जो ओपोनेंट था जो अगेंस्ट खेल रहे थे. एंड दिस वन इज़ फॉर ओएस याकूब, दिस वन इज़ फॉर पीपल हु आर गिविंग देम अ चांस टू गो फॉरवर्ड एंड रिप्रेजेंट इंडिया, रिप्रेजेंट कश्मीर एट अ लार्जर लेवल.

एंड ये जो इनकी विन है, ये जो इनकी विक्ट्री है, इट इज नोटेड एज अ हिस्टोरिकल विन बिकॉज इनका एक रिकॉर्ड रहा है विनिंग स्ट्रीक का, दैट इज 6-1. मैं हूँ अश्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनाना. आप भी बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है. देखिए इतनी खुशी, इतनी खुशी. एंड जब अच्छा लगता है जब कोई कश्मीर से आगे बढ़े, इंडिया को रिप्रेजेंट करे, किसी भी फील्ड में अपना नाम रोशन करे, सर लोकली, नेशनली या इंटरनेशनली. अब लेट अलोन दिस इज समथिंग सच अ बिग थिंग फॉर बोथ ऑफ द पीपल. आकिब नबी हो, एस याकूब हो, यहाँ हर घर में टैलेंट है. हर घर में जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हर फील्ड में. आप बताइए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप क्या चाहते हैं कि आगे आप इंटरनेशनली, नेशनली कश्मीर, इंडिया को रिप्रेजेंट करें. मैं हूं अश्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. अभी भी कुछ वक्त बाकी है, एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स और फिर हम आपसे अलविदा लेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM.

रेडियो चुनान 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chunar 90.4.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिलजीत सिर्फ दिलजीत नाम से नहीं है, बल्कि उनके जो लिरिक्स हैं, उनका जो म्यूजिक है, वो भी दिलजीत लेता है। अब अगर आपको पंजाबी समझ नहीं आती, तो इसमें इस गाने में ये कह रहा है कि केस तो जीत जाता हूँ मैं, बट जो दिल है वो मैं हार चुका हूँ। And honestly, जो लोग कहते हैं कि पंजाबी इज अ वेरी अग्रेसिव लैंग्वेज, उसमें प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत है। मैं हूं अस्टा, आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर, एंड शो है हंगामा, ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, क्या क्या नहीं किया हमने आज। और दिस इज माई टेक ऑन इट कि अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ बराबर 4 तक होता है। और देखिए, आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, समर हैक्स के बारे में बात की, रेलवे अपडेट, और उसके अलावा आज का क्या ट्रेंडिंग था इसके बारे में भी बात की। इसके अलावा ये भी था कि अभी जो गेम ऑन में वी वर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, कश्मीर, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते बस यही कि अपना ख्याल रखिए, एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग क्रेजी फॉर योरसेल्फ। क्रेजी इन द सेंस कि आप अपनी सोल को रिचार्ज करने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं। सम पीपल पेंट, सम People sing, some people write, some people listen to music, but बस काम रुकना नहीं चाहिए, चलता चलते, मतलब कह रहा है जिंदगी का काम है वो चलते जाना, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, और दिस वॉज ऑल अबाउट मी, दिस वॉज ऑल अबाउट शो हंगामा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज ये असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

You're listening to this beautiful track rolling in the background, Ramaiya Vastavaya from the movie Is Jawan. Enjoy this track. आज हम बात कर रहे हैं शो पे. जी हाँ, आज हम रियल सक्सेस मंत्रा पे बात कर रहे हैं. आप बने रहे हमारे साथ, अपने ख्याल हमारे साथ शेयर कीजिए. 9999904 हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन. आरजे साहिल मुजफ्फर इन द हाउस एंड आई विल बी राइट.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन।
2: जी दोस्तों, अगर आपने अभी अपनी ट्यून किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ। सक्सेस के हवाले से हो रही बात, सक्सेस मंत्रा, कौन ऐसा इंसान है जो दुनिया में कामयाब होना नहीं चाहता है, और हर एक कामयाब इंसान की अलग कहानी है, अलग स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं तभी जाके वो आगे पहुंचते। क्या है रियल सक्सेस मंत्रा, इस पे हम करेंगे बात। आई ट्रूली बिलीव कि एक इंसान को जो डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ और सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ अपनी जब ट्रैक पे वो आगे जाएगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस हो ही जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्या कुछ ऐसे प्रीरिक्विजिट्स है सक्सेसफुल होने के लिए इस दुनिया में, बताइए हमें। आज हम द रियल सक्सेस मंत्रा पे कर रहे हैं बात। 8999904904 पे कॉल करें, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करें और बन जाए शो का हिस्सा। मैं हूं साहिल मुजफ्फर, आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय सम सुपर कूल बॉलीवुड म्यूजिक इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग कमिंग योर वे, ओनली फॉर यू।

0: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

की बात साहिल के साथ, सक्सेस कामयाबी किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको ये भाती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सेज हम तक पहुंचे, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे जब बात होती है तो वी ऑलवेज फील यू नो एनलाइटनड, क्योंकि रेडियो चिनार इज ऑलवेज देयर फॉर अस टू एंटरटेन अस, और साथ साथ ऐसे टॉपिक्स पे बात होती है जो हमारी जिंदगी में कुछ और वैल्यू ऐड करती है। देखिए, सक्सेस की अगर हम बात करें, सक्सेस के लिए मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगती है, माँ बाप की दुआएं लगती है और ऊपर वाले का साथ होना चाहिए, फिर आपको कामयाबी और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यूँ समझते हैं कि सिल्वर स्पून के साथ हम पैदा हुए हैं तो कामयाब होना हमारी किस्मत में लिखा है, दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। लेकिन जब स्क्रैच से बंदा कोई शुरू करता है, मेहनत करता है और अपना टाइम लेता है, यू नो ए पर्सन टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम, मेहनत, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और हर एक चीज़ उस कामयाबी के सफ़र में डाल देता है, जिससे वो कामयाबी और खूबसूरत लगती है, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द रियल एंड ट्रू मंत्र ऑफ सक्सेस। और हमें इस कामयाबी के साथ साथ हमारे आए आसपास के लोगों का ध्यान रखना है, हमारे उन अपनों का ध्यान रखना है जो कभी हमसे रूठते हैं, उन लोगों का ध्यान रखना है जो हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं, और उन लोगों का भी ध्यान रखना है जो हमारे लिए ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं और उनकी जिंदगियों में भी हमारे होने से बाहर हो जाए। आप सुनते रहिए रेडियो चिनार।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। Chin up, chin up, chin up, chin up, chin up. It's R&B.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

ओके तुम आ रही हो, मैं जाऊं। लगता रूम में रह गई।

0: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
1: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मस्तन सुनो।

50.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Hey, it's Vedharsh Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: Chinar Beats with Harshit Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM. 0.4 FM.
1: पानी, पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी

0: जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: पानी, पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: दिल को
5: करार आ जाए
4: जब भी आए
5: सुहानी शाम,
4: दबी यादें महक जाए
5: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
5: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
5: 90.4
4: FM।
0: रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर

0: खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
0: 90.4
1: FM।
2: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी इंसान था।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सारे ग ग म प प म ग म प प म रे म ग।
3: हाँ सा

0: ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: करार। ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बड़के बुदन तीर भी टक्कर, क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार।
1: हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ, हाय हाय ना बनाओ, हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया।

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की मुश्किल।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: तो बताओ हमको
1: डूब मरो।
0: डूबेगा नहीं तरेगा
2: छप छप छप छप छप छप छप छप
0: डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा?

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।